0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज फिर आप सबका स्वागत। कौन सी ऐसी बातें हैं जो मेरी खुशी मुझसे छीन लेती हैं, या मैं देखूं तो मैं खुश नहीं रह पाता। उसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आई थी वो थे मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस। कहीं ना कहीं जो गुजर गया, जो कल था, उसे ऐसे पकड़ा हुआ था मैंने, जब लेट गो किया या उस पास्ट को प्रेजेंट नहीं बनने दिया तो मेरी खुशी फिर मैं क्रिएट कर पा रहा था। अब आगे बढ़ते हैं और फ्यूचर की तरफ देखते हैं। फ्यूचर यानी मेरी प्लानिंग मेरे जीवन का आधार हो जाता है कि मुझे यहाँ यहाँ यहाँ यहाँ ये सब कुछ करना है। तो क्या उसको करते हुए भी मैं कहीं अपनी खुशी से तो परे नहीं जा रहा? कोशिश करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: पास्ट को तो हमने मान लिया, हम सब जानते हैं सिस्टर शिवानी की पास्ट को नहीं पकड़ कर रखना चाहिए। और बहुत अच्छी तरह से हमारे सामने पिछले कई कड़ियों में ये बात आई कि क्या ऐसा प्रोसीजर है कि हम जो गुजर गया उसे जाने दें और उसे अपना प्रेजेंट ना बनाएं। लेकिन फ्यूचर प्लानिंग तो हर कोई करता है। फ्यूचर प्लान्स की बात करते हैं, गोल्स की बात करते हैं, अचीवमेंट्स की बात करते हैं, और फिर एक लक्ष्य साध कर उस पर आगे बढ़ते जाना। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि मैं अपने फ्यूचर को ध्यान में रखता हुआ अपनी आज की स्टेबिलिटी को मेंटेन कर पाऊं।
1: Yeah, very important, क्योंकि इस पर जब हम बात करें तो बहुत ज्यादा questions मुझे लगता है उठने वाले हैं कि क्या फ्यूचर प्लान नहीं करें। अलग अलग तरह से हम इसको देखते कि कैसे हम, जैसे हमने पिछली बार देखा कि हम पास्ट में बहुत ज्यादा जीते हैं, हम यहाँ हैं लेकिन मन पास्ट के बारे में सोच रहा, उतना ही हम देखते कि हम फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा जीते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं खुशी को जब हम ढूंढते हैं तो खुशी को हम फ्यूचर में बहुत ढूंढते हैं। आई एम नॉट हैप्पी नाउ बट आई विल बी हैप्पी
0: इफ दिस थिंग हैपेंस, वंस आई अचीव दिस।
1: सो व्हेन आई से आई विल बी हैप्पी व्हेन दिस हैपेंस, आई हैव पुट माय हैप्पीनेस इनटू द फ्यूचर, एंड तब मेरा सारा ध्यान ये होता कि ये होगा तो खुशी होगी। अब दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, अगर ये होगा तब खुशी होगी। जब ये थॉट आती तो साथ में ये भी थॉट आ जाएगी, अगर नहीं हुआ तो। यू सी व्हेनेवर देयर, नो इट कुड बी फियर, इट्स ओनली अ फियर,
0: देन आई विल नॉट बी हैप्पी, यू नो इट विल टेक अवे माय हैप्पीनेस।
1: दैट इज व्हाट वी सॉ अर्लियर, कि जब भी हैप्पीनेस किसी चीज पर डिपेंडेंट होती है तब फियर ऑटोमेटिकली आ जाता, क्योंकि जहां डिपेंडेंसी है वहां ये इनसिक्योरिटी तो होने ही वाली है कि अगर वो नहीं हुआ तो, या अगर वो चले गए तो, व्हाटएवर। सो डिपेंडेंसी एंड इनसिक्योरिटी ये साथ साथ जाएंगे। जहां मेरी किसी चीज पर डिपेंडेंसी है तो एक थॉट अंदर इनसिक्योरिटी का साथ साथ आ ही जाएगा। तो हैप्पीनेस एंड फियर कैन नॉट बी टुगेदर। आई एम लुकिंग फॉर हैप्पीनेस देन, दैट मीन आई एम नॉट हैप्पी नाउ, आई एम सेइंग ये होगा तो आई विल बी हैप्पी, लेकिन नाउ व्हाट एम आई क्रिएटिंग? साथ साथ मैं वो फियर के थॉट्स भी क्रिएट करना शुरू कर देती कि अगर ऐसा हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो, अगर नहीं हो पाया, अगर वो नहीं कर पाए, अगर वो कल मेरे साथ नहीं हुए। सी, बहुत सारी चीज़ें हमें जीवन में मिली हैं लेकिन हम बहुत बार फियर में जीते हैं कि कहीं ये हमारे से छूट ना जाए। तो उस प्रोसेस में क्या होता, हम उनको प्रेजेंट में, सी, फियर ऑफ लूजिंग जॉब, फियर ऑफ लूजिंग प्रॉपर्टी पोजेशन, फियर ऑफ लूजिंग फैमिली, कहीं मेरे परिवार को कुछ ना हो जाए, एंड सबसे ज्यादा फियर कहीं मुझे कुछ ना हो जाए। अब इन सारी लिस्ट ऑफ फियर्स में हमें ये भी पता है कि एक ना एक दिन सारी चीजें जो मिली हैं वो जाने ही हैं, लेकिन वो जब तक मिली हैं उनको इंजॉय करने की बजाय मैं फ्यूचर को एंटिसिपेट कर करके अभी क्या क्रिएट करती। See, once we understand happiness creation है यहाँ पर, happiness is not outside, तो मुझे सिर्फ सारा दिन क्या चेक करना, मेरी thoughts क्या है, मेरी thoughts क्या है। तो अब जितनी देर मैं ये सोच रही हूँ ये होगा तो, साथ में दूसरी thought ही आएगी,
0: अगर ये नहीं हुआ तो।
1: तो अब जब मैं fear, वैसे भी जब मैं सोच रही हूँ कि ये होगा तो अभी मैं खुश नहीं हूँ, मैं अपने आप को ये कह रही हूँ ये होगा तो खुशी होगी, तो अभी का इमोशन कौन सा है? फियर का है। तो इसलिए हर पल हमने देखा, इस पल में अगर हम इस पल के बारे में सोच रहे हैं नेक्स्ट वाले, तो ये पल कैसा बीता? डर में। तब तक फिर यहाँ गए, तब कौन से पल के बारे में सोचा? नेक्स्ट वाले।
0: तो एंटिसिपेशन में, डर में, डर में। ये होगा,
1: ऐसे करते करते आपकी पूरी जर्नी किस में बीती?
0: और वो पल तो निकलते ही गए, मैंने सोचा था कि एक साल के अंदर अंदर ये होगा।
1: देखो अलग अलग तरह से हम फ्यूचर के बारे में सोचते, एक होता है जो लोग बहुत चिंता करते हैं, जो मेरे को लगता है हम सब चिंता करते हैं, वरी, वेरी वरी काइंड ऑफ पर्सनालिटी। जो वरी करते हैं वो किसके बारे में सोच रहे हैं?
0: फ्यूचर
1: के बारे में सोच रहे हैं। अगर ये हुआ तो एक दिन सिर्फ चेक करना कि वरी की जो थॉट्स होती हैं उसमें होता क्या है, किस तरह की हम थॉट क्रिएट करते, हम आने वाले पल के बारे में, फ्यूचर के बारे में एक इमेज क्रिएट कर देते, वो इमेज अच्छी नहीं होती है। चिंता मतलब कि कुछ बुरा होने वाला है, चिंता मतलब कुछ अच्छा होने वाला है, ये थॉट नहीं आएगा। तो चिंता मतलब कुछ ट्रेजेडी, कुछ कैटास्ट्रोफ, कुछ गड़बड़ वाला होने वाला है, वो इमेज हम अभी क्रिएट कर देते और अभी इस पल उस इमेज को देख देख के
0: डरते
1: रहते हैं। सो आई बेसिकली क्रिएट अ फ्यूचर इमेज, नॉट अ प्लेजेंट वन, एंड आई यूज दैट पिक्चर इन माई प्रेजेंट मोमेंट एंड आई क्रिएट पेन। सो माई एवरी मोमेंट वरिंग अबाउट द नेक्स्ट मोमेंट, माई एवरी मोमेंट इज पासिंग इन पेन बिकॉज आई एम क्रिएटिंग अ पिक्चर ऑफ।
0: सपोज आई एम वेरी पुअर, यू नो मेरे घर में सब क्योस है, मेरे जीवन में क्राइसिस आया हुआ है जिसको मैं कुछ नहीं कर पा रहा। दैट इज द टाइम व्हेन आई यू नो अपना काम तो कर्म तो करता ही रहूंगा, लेकिन यू नो यू कीप ऑन एंटिसिपेटिंग योर फ्यूचर एंड वेयर यू सी दैट यू नो यू विल गेट मनी या ये चीजें सॉर्ट आउट होती जाएंगी, होता जाएगा। एटलीस्ट इट्स गिविंग मी हैप्पीनेस फॉर दैट टाइम, बिकॉज अभी जो मैं चाह रहा था वो नहीं हो रहा।
1: इसको हम कहेंगे ड्रीमिंग पर्सनैलिटी कि आप अभी यहाँ है लेकिन यहाँ आप टुमोरो में है, यू ऑलरेडी गॉन टुमोरो एंड यू विल फाइंड पीपल हु लव टू बी इन देयर टुमोरो, जिसको हम कहेंगे ये तो ख्वाबों में ही रहते हैं अपने ज्यादा दिन। क्यों वो ख्वाबों में रहते हैं? उनको आज पसंद नहीं है, दे आर इन पेन। सी व्हेन विल आई एस्केप फ्रॉम टुडे एंड लिव इन द टुमोरो?
0: आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर एक्चुअली, यू नो वी डोंट वांट टू लिव इन
1: प्रेजेंट। ईच वन नीड्स टू चेक, हर एक अपना अपना देखेगा।
0: व्हाई वी डोंट वांट टू लिव इन प्रेजेंट?
1: क्योंकि अभी मेरे अंदर दर्द है, मैं उस दर्द के ऊपर काम नहीं करना चाहती हूँ, मैं मेहनत नहीं करना चाहती हूँ इससे, पर मैं फील तो अच्छा करना चाहती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ
0: कहीं पे भी? हाँ, किसी और
1: कोई वी टेकिंग डिफरेंट वेज ऑफ यू नो एस्केपिंग दीज थॉट्स ऑफ पेन। जो हमने देखा, चाहे टीवी देखना है, चाहे हॉलीडे पर जाना है, वो ये क्या कर रहा था? वो ये कर रहा था कि ये अभी वाली जो दर्द वाली थॉट्स हैं इनको थोड़ी देर के लिए, एटलीस्ट चलो घंटे के लिए भी, एटलीस्ट एक घंटे के लिए मैं इनको साइड पे करूँ, मैं कुछ और देखूँ, आई फील गुड। जितनी देर मैं फ्यूचर के बारे में सोचती हूँ, सपोज मैं 15 मिनट, अभी मैं बहुत दर्द में हूँ लेकिन मैंने माइंड को अपने अगले साल में शिफ्ट कर दिया और मैं फ्यूचर के बारे में सोचते गई एंड आई क्रिएट अ ब्यूटीफुल फ्यूचर, तो 15 मिनट क्या हुआ? आई एस्केप्ड, आई रैन अवे फ्रॉम माई प्रेजेंट थॉट्स ऑफ पेन एंड आई लिव्ड इन द फ्यूचर एंड आई क्रिएटेड अ वेरी ब्यूटीफुल फ्यूचर। आई फेल्ट नाइस आफ्टर दैट।
0: आई कम बैक रिफ्रेश्ड, बट कैन आई, कांट आई
1: डोंट कम बैक रिफ्रेश्ड, आई कम बैक इवन मोर इन पेन, क्योंकि ऐसे
0: ये तो अभी बचा है यहाँ पे,
1: अभी तो नहीं है ना। लेकिन जो भी हम कहते हैं ना, पास्ट की भी मेमोरीज, चलो आज बहुत दर्द में है लेकिन पिछला साल बहुत अच्छा बीता था, राइट? तो चलो पिछले साल को याद करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। 10 मिनट याद कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा, 11वां मिनट क्या हुआ? दर्द हो गया, लेकिन अभी तो नहीं है ना
0: वो अभी क्यों नहीं आ सकता? एंड देन दिस यू नो कि वही चीज क्यों नहीं हो जाती?
1: पेन इज इन द प्रेजेंट मोमेंट, तो मुझे एड्रेस भी उसको कहाँ करना पड़ेगा, उसको फेस भी कहाँ करना पड़ेगा? यहाँ। अगर इफ आई कीप रनिंग अवे फ्रॉम माई पेन, दैट्स नॉट द सोल्यूशन। बीमारी है, लेट्स एड्रेस द इलनेस, बीमारी को ठीक करते हैं। ख्वाबों की दुनिया में जी के कि ये ठीक हो जाएगा तो ऐसा होगा, ठीक हो जाएगा? और अगर आज उसको ठीक नहीं किया तो अगर आप सोचते भी रहे कि ये कल ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा? अगर आज हम दर्द में हैं और अगर हमने उसको ठीक नहीं किया अपने थॉट्स को, तो कल कौन सी थॉट्स होंगे? सिचुएशंस चेंज हो जाएंगी। सी हम क्यों कल के बारे में सोचते? क्योंकि हमने सोचा खुशी परिस्थितियों पे डिपेंडेंट है। तो आज परिस्थिति ठीक नहीं है, मैं दर्द में हूँ, लेकिन आई एंटिसिपेट कि कल परिस्थिति ठीक हो जाएगी एंड मैं कंक्लूजन ये ले आती हूँ कि जब परिस्थिति ठीक हो जाएगी तो कल मैं खुश होंगी। व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज कि यस, परिस्थितियां कल बहुत अच्छी हो जाएंगी। जो आपने जैसे कहा कि समवन इज वेरी पुअर, आज उनके पास धन नहीं है, हो सकता है जैसे वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कल उनके पास बहुत धन आ जाए, वेरी गुड, बट इट डज नॉट मीन कि उनके पास तब बहुत खुशी भी आ जाएगी। खुशी यहाँ की क्रिएशन है और उसको हमें हर पल में क्रिएट करना होगा. अगर हमने आज उसको नहीं क्रिएट किया, बिकॉज थॉट इज अ सीरीज ऑफ थॉट, तो अगर मेरा दिस थॉट इज इन पेन, देन माय नेक्स्ट थॉट will automatically be in pain, then the next thought will automatically be in pain. And that's why we say, if today is in pain and aaj usko address nahi kiya, to tomorrow will automatically still be in pain. Aap kitna bhi sochte jao ki bahut acha ho jayega, bahar acha ho jayega, lekin yahan to fir bhi dard create hoga.
0: Nahi to ye kaha jata hai ki sapno mein rehna chahiye ya sapne lene to chahiye kam se kam. So again, I just want to know ki whether it's a right personality, right way of looking.
1: Escaping from the present. What is, you know, fantasizing bahut zyada bhavishya ke bare mein, escaping from the present. So how far would that be beneficial for me? Again, main energy, main apni wo thought power use kar raha hoon kuch aisi cheez ko create karne mein jo ki mere control mein
0: है ही नहीं.
1: मेरे कंट्रोल में सिर्फ ये वाला पल है और इस पल में मेरी स्थिति, ये मेरे कंट्रोल में है. इसके अलावा मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं.
0: बट क्रिएटिविटी तो ये कहा जाता है कि यू नो, क्रिएटिंग योर ओन ड्रीम्स,
1: क्रिएटिंग योर मोमेंट राइट नाउ. आप आज क्रिएट करते जाओ, आज से आपका कल ऑटोमेटिकली अच्छा क्रिएट होता जाएगा. सी व्हाट वी डोंट अंडरस्टैंड, दिस इज अ सीरीज. आज अच्छा फील कर रहे होगे, घर पहुंचोगे, सबके साथ अच्छे होगे, रात को नींद अच्छी आएगी, कल सुबह उठोगे अच्छा ही फील करोगे. लेकिन आज चिंता में बिता दिया, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, तो कल क्या होगा?
0: कल वो आ जाएगा जिसने मुझे खुशी देनी है.
1: खुशी देनी है, वो सिचुएशन आ जाएगी. लेकिन आज अगर मैंने चिंता क्रिएट की थी, तो कल भी मेरे मानसिक स्थिति कैसी होगी?
0: और हो सकता है वो सिचुएशन जब तक आए तब तक मेरे सर में दर्द हो चुका.
1: और कल मेरे पास एक और कल है ना चिंता करने के लिए. सी, अगर मेरी आदत बन गई है चिंता करने की, तो दिस इज गोइंग टू गो ऑन विद मी टिल द एंड. समवन वेरी ब्यूटिफुली सेड एट द एंडिंग फेज ऑफ देयर, यू नो, दिस पर्टिकुलर बर्थ. They said, I have spent all my life worrying about those things which never actually happened. Hum puri jeevan bitate hain un baaton ke bare mein soch ke, chinta karke, jo actually hui nahi. Jab wo hogi tab dekhenge na. Why do I create it beforehand? To fir hum kehte, main isliye chinta karta hun because I care. I worry because I care. To humne worry aur care ko jod diya. Care to pyar hai, sneh ki shakti hai, aur worry फियर की शक्ति है. तो फियर और स्नेह ये इकट्ठे नहीं हो सकता. दीज आर टू एनर्जीज.
0: आई एम अफ्रेड एक्चुअली दैट आई विल लूज फियर.
1: सो ये जो चिंता करने की आदत है, भविष्य का क्रिएट करके अभी डर में जीने की आदत है, इससे हमारी बहुत सारी एनर्जी डिप्लीट हो जाती और इससे मेरा प्रेजेंट मोमेंट डेफिनेटली दर्द में बीतता. दूसरा जो आपने कहा, अचीवमेंट, अचीव करना है, वेरी गुड, आई वॉन्ट टू अचीव समथिंग. लेकिन उनको भी जो इस तरह की जीवन जीते हैं, जो डिपेंडेंट है अचीव करने में, तो क्या होता है, उनका हर टाइम जो मानसिक स्थिति है ना, इट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट टू अचीव नेक्स्ट. यू नो, वो ऐसे नहीं बैठ पाएंगे विद नथिंग रियली हैपनिंग हियर, नेक्स्ट व्हाट टू अचीव, क्योंकि वो जो अचीवमेंट है वो उनको एक
0: स्टिमुलेंट
1: है, वो उनको एक किक देता है. समटाइम्स इट कुड बी रिकग्निशन, औरों का अप्रूवल, औरों से रिकग्निशन. समटाइम्स इट कुड बी जस्ट द रियलाइजेशन, हो गया, ये मेरे से ये भी हो गया. या समटाइम्स इट इज काम तो करते ही जाना है, क्योंकि उसी से मुझे खुशी मिलती है. तो वो क्या करते हैं, अपना सेट करते जाते हैं, यू नो, टिक, चेकलिस्ट होती जाती है. ये हुआ, अचीव किया. जिस पल अचीव करते हैं तो एक रिलीफ एक्सपीरियंस होता है, चलो ये भी हो गया. ये रिलीफ है, ये खुशी नहीं है, पर ये भी बहुत थोड़ी देर रहेगी, क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट, अब नेक्स्ट क्या अचीव करना है. तो जिन्होंने अपनी खुशी को इस अचीवमेंट पर भी डिपेंडेंट कर दिया, तो वो खुश भी नहीं होते उस पल, सिर्फ रिलीव्ड होते हैं, और वो भी लेकिन कितनी देर के लिए, शॉर्ट, नेक्स्ट मोमेंट, नेक्स्ट. सो वी वॉन्ट हैप्पीनेस टू बी एवरी टाइम, एवरी टाइम, नॉट फियर में या इनसिक्योरिटी में या एंटिसिपेशन में, नेक्स्ट क्या होगा, या ये भी करना है, क्योंकि जब ये कर लूंगा तब खुशी होगी. तब उनका सारा फोकस किस पे शिफ्ट हो जाता है, अब क्या करना है नेक्स्ट. उस प्रोसेस में प्रेजेंट पल बीत जाता है. अब ऐसे लोगों के जीवन में अचीवमेंट्स बहुत सारी आ जाती. दे अचीव अलॉट, क्योंकि उनका फोकस ही लाइफ में वो है, ये अचीव करना है. लेकिन खुशी, दे नीड टू आस्क देमसेल्व्स दैट दे नो बेस्ट, सके उनका, क्योंकि वो जो पूरी यात्रा होती है फ्रॉम वन अचीवमेंट टू द नेक्स्ट अचीवमेंट वो काफी
0: उसमें काफी वो जो फियर ऑफ यू नो लूजिंग एंड देन जो मेरे पास है वो भी छूट जाएगा या वहां तक पहुंच जाऊंगा तब. Wonderful. I think
1: और वो कहीं ना कहीं उनकी खुशी उस अचीवमेंट पर बहुत डिपेंडेंट हो जाती है, यू नो, क्योंकि वो एक संस्कार बन गया.
0: जब वो नहीं मिल रहा होता तब तक ऐसे रहते हैं, ऐसे हो जाते हैं.
1: और उस अचीवमेंट को पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं. दिस इज वेयर अ लॉट ऑफ अस स्टार्ट मेकिंग कॉम्प्रोमाइजेस, चाहे वो अपने वैल्यू सिस्टम पे है, चाहे वो अपनी फैमिली पर है, चाहे वो क्यों, क्योंकि अचीव करना, अचीव करना, अचीव करना, अचीव हो जाएगा खुशी, पता नहीं, इट्स अ क्वेश्चन मार्क, दे हैव टू आस्क देमसेल्व्स. एंड जैसे ड्रीम करना, बहुत ज्यादा भविष्य के बारे में सोचना, अनदर वेरी कॉमन थिंग जो हम करते हैं, जो हम फ्यूचर में खुशी ढूंढते हैं, दैट इज आर डिजायर्स. एवरीवन, वी ऑल से कि इच्छाओं के बिना तो जीवन कैसे बीत सकता है. आई डिजायर फॉर दिस, आई डिजायर फॉर दिस, अगेन सेइंग ये होगा. इट कुड डिजायर फॉर ऑब्जेक्ट कि ये मिलेगा तो खुशी. आई कुड डिजायर फॉर मोर लव फ्रॉम पीपल. आई कुड इवन डिजायर फॉर मोर टाइम. और टाइम मिल जाए ना, मुझे तो 24 घंटे ही कम पड़ते. तो ये डिजायर्स की भी जो हमारी लिस्ट है वो बहुत लंबी होती जाती, और कई बार तो पूरी भी होती जाती वो हमारी डिजायर, लेकिन जितनी डिजायर्स पूरी होती उतनी लिस्ट
0: और बड़ी होती जाती,
1: और भी लंबी होती जाती. क्योंकि ये इच्छाओं के पीछे एक बहुत सूक्ष्म सटल जो थॉट है वो ये कि जब ये डिजायर मेरी अचीव हो जाएगी, आई दैट सेल्फ विल बिकम कम्प्लीट. यू नो, व्हेन आई गेट दिस मोर फ्रॉम यू, आई विल बिकम कम्प्लीट, आई विल बिकम कंटेंटेड. राजयोग हमें ये सिखाता, आई द सेल्फ
0: इज ऑलरेडी
1: कैन नॉट बी कम्प्लीट बाय एनीथिंग आउटसाइड, आई एम ऑलरेडी कम्प्लीट. मुझे कुछ भी बाहर से नहीं चाहिए जिससे मैं कम्प्लीट
0: हो जाऊं. करते यू नो, हम फील कंप्लीट क्यों नहीं करते अगर हम हैं, यू नो, लाइक इफ वी अंडरस्टैंड दिस होल कॉन्सेप्ट, तो हमें ये जो अर्च है बाहर से, चाहे प्यार की, चाहे ज्ञान की, चाहे किसी भी चीज की या अचीवमेंट की, ये फिर क्यों है?
1: बिलीफ सिस्टम. क्योंकि फीलिंग किस पे डिपेंडेंट है?
0: बिलीफ.
1: अगर मेरा बिलीफ ये है कि ये होगा तो आई विल फील गुड, ये होगा तो आई विल फील कंप्लीट, so then I will feel like that only, and I'll keep looking for
0: let's
1: it.
0: Try to change that and say that I'm already full,
1: I'm complete, I'm full, I'm beautiful.
0: But how will I create that belief system now?
1: I create
0: by reinforcing it now.
1: I create, abhi humne create kar diya already. Ab isko kya karna hai, is belief system ko jeevan ki yatra mein leke chalna hai. Jaise hi koi thought aaye ye hoga to mujhe acha lagega, immediately stop and tell yourself
0: तो अच्छा
1: तो
0: है,
1: तो ऑलरेडी अच्छा, आई एम ऑलरेडी फीलिंग नाइस. हाँ ये हो, वेरी गुड, लेकिन मेरा फीलिंग इसके होने पर डिपेंडेंट नहीं है. एक दिन इसको करके देखो, यू विल सडनली स्टार्ट फीलिंग वेरी वेरी लिबरेटेड. क्योंकि अभी तो हम इतनी चेन्स में बंधे हुए हैं कि ये सब होगा देन आई विल फील गुड, एंड ये सब कुछ मेरे अनुसार.
0: लेकिन वो जब हो रहा होता है तब तो वी फील गुड, बिकॉज वी हैव क्रिएटेड दैट, ओह, we've created the thought कि अगर वो होगा तभी फील करेंगे, इसीलिए जब वो होता है तो हम फील करते हैं.
1: लेकिन उसके बाद फिर हमने एक और थॉट भी तो क्रिएट हो गया था, अब ये होगा देन आई विल फील गुड. सी, जब से ही वो डिपेंडेंट है तो वो हमेशा ही डिपेंडेंट रहेगी. तो जैसे ही सपोज आई एम डिपेंडेंट कि आप मुझसे अच्छी तरह से बात करें, देन आई विल फील गुड. तो आपने मुझसे बहुत अच्छी तरह से बात, आई फील वेरी गुड. लेकिन अब आई एम डिपेंडेंट कि आप हमेशा मुझसे अच्छी तरह से बात करेंगे, दैट इज समथिंग I don't.
0: I expected then,
1: and
0: you know.
1: And then it's not only on you. Now I expect कि सब लोग हमेशा मुझसे बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे. How far is that in my control?
0: एक बार मेरा एक belief system ये reinforce हो गया कि मैंने ये सोचा था कि ये अच्छी तरह से बात करेंगे, मैं feel good करूंगी, वही हुआ, तो अब हर जगह यही चले.
1: Absolutely.
0: तो again I think we can reverse it. इस पर मैं बात करती हूँ कि कैसे, how to do that. लेकिन उससे पहले एक thought power की जब बात होती है कि whatever you want in life, you know, स्थूल में भी करें या जो भी चीज चाहिए, उसको क्रिएट करो, उस फ्यूचर को देखो, और उसके बाद उसको विजुलाइज करो. मतलब थॉट क्रिएट किया, सपोज मुझे एक पोस्ट चाहिए, अच्छा मेरे को अपना कंपनी का सीईओ बनना है, आई क्रिएट दैट थॉट एंड देन आई स्टार्ट विजुलाइजिंग माई सेल्फ, स्टार्ट लिविंग इन दैट एंड स्टार्ट लिविंग इन, यू नो, गिविंग इट ऑल विदाउट एनी ट्रेस ऑफ यू नो
1: डाउट
0: एंड इट हैपन्स. And people are doing it now. I'm saying like it's so much in thing now.
1: True.
0: But then, am I able to live in my present then?
1: It all depends how you're feeling that time. See, some people are being able to achieve it, and yet at the same time, there are many, many people who are not being able to achieve this. Kyunki jaise hi, it's very good.
0: Because I tried this with myself, I was not able to achieve it.
1: Because once we understand, thoughts create destiny. तो हमें जब ये समझ में आ गया तो हमने इसको किन चीजों के लिए यूज करना शुरू किया. आई क्रिएट अ थॉट तो मुझे ये मिलेगा, ये प्रमोशन मिलेगी, ऐसा हो जाएगा मेरे जीवन में. फिर हमने वो एनर्जी उसके प्रति क्रिएट करनी शुरू कर दी. लेकिन हम बहुत कम हैं जो उसमें एक भी थॉट ऑफ डाउट नहीं क्रिएट करते. क्योंकि जैसे हमने पहले देखा, ये होना ही चाहिए, ये हो, यू नो आई गेट अटैच टू द आइडिया कि ये मुझे मिलना ही चाहिए. तो कहीं ना कहीं एक थॉट तो दर्द की जरूर क्रिएट होती,
0: सपोज
1: नहीं मिला तो. एंड मैं बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाती हूँ उस प्रेडिक्टेड फ्यूचर पे, है ना. ये होना ही है, दिस हैज टू हैपन. इफ इट हैपन्स वेरी गुड, लेकिन बाय चांस नहीं हुआ तो. अगर वो नहीं हुआ, क्योंकि जब सब कुछ जो हो रहा है वो सारा कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं है. अब वो जब नहीं होता, आई गो एब्सोल्युटली. जब हम कहते हैं थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी, तो हमें ये समझना पड़ेगा जो थॉट्स मैं क्रिएट कर रही हूँ अभी, वो मेरी अभी की डेस्टिनी बना रहे हैं, अभी हाउ आई फील, एंड ऑल्सो वॉट इज गोइंग टू हैपन विद मी. एंड सिमिलरली अभी जो मेरे साथ हो रहा है, इट इज बेस्ड ऑन मेनी थॉट्स दैट आई हैव क्रिएटेड इन द पास्ट. अब क्या होता, मैंने अभी तो अपनी थॉट की क्वालिटी चेंज कर ली, लेकिन हो सकता है पहले मैंने बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी थॉट्स पहले क्रिएट की थी, विच हैज गॉन आउट इन टू द यूनिवर्स. जो हम कहते हैं ना, थ्रो दिस एनर्जी आउट इन टू द यूनिवर्स, तो वो भी तो बहुत सारी एनर्जी भेजी हुई है, विच इज ऑल्सो ऑन इट्स वे बैक. तो हम तुरंत रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, अभी मैंने ये थॉट क्रिएट किया, ये मेरे साथ हो जाना चाहिए. गेटिंग अटैच्ड टू समथिंग ऑफ द फ्यूचर, मोर इम्पोर्टेंट वुड बी अभी अपना ध्यान रखते जाए. एक तो अंदर और एक तो बाहर, काम कर रहे हैं आप, एफर्ट कर रहे हैं, सिंसियरली कर रहे हैं, हर मोमेंट को इस मोमेंट में अच्छा बिताते जाए. एंड देन आप देखेंगे जैसे जैसे एक पल अच्छा बीतेगा तो अगला पल अच्छा बीतेगा ही बीतेगा. ये पल अगर अच्छा ना तो नेक्स्ट पल तो बीतना ही है. एंड ये करने से आपके अंदर इतनी ताकत, इतनी शक्ति अक्यूमुलेट हो जाती है कि अगर सिचुएशन आपकी फेवर में नहीं भी आती, कोई भी सिचुएशन, आपके अंदर बहुत ताकत है उस सिचुएशन को फेस करने की. लेकिन हर पल अगर इस फियर में या एंटिसिपेशन में अगले पल के लिए बिता दिया, तो हम इतने कमजोर हो जाते कि जब कोई सिचुएशन हमारे सामने आती जो हमारे फेवर में नहीं है, आई डोंट हैव द पावर टू फेस सिचुएशंस. सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं. ऑल दैट वी आर ट्राइंग टू डू इस पूरी सीरीज में, हम क्या ट्राई कर रहे हैं, हम क्या ऐसा करें ताकि हम पावरफुल रहे, हम शक्तिशाली रहें, ताकि कुछ भी हो जाए आई विल बी एबल टू रिमेन स्टेबल. अब जितना फ्यूचर के बारे में सोचेंगे जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, व्हाट थॉट्स एम आई क्रिएटिंग, अगेन आउट ऑफ कंट्रोल थॉट्स, अगेन फियरफुल थॉट्स, एंटिसिपेटरी थॉट्स, एनर्जी डिप्लीट होती जा रही. तो फिर मेरे अंदर की जो शक्ति है कम होती जा रही है.
0: तो अगर तो हाउ टू गो अबाउट, वी हैव टू मेक आवर फ्यूचर प्लान्स, वी हैव टू मेक आवर गोल्स एंड वर्क फॉर देम आल्सो. सो व्हाट एनर्जी,
1: अगर गोल बनाना भी है आपने तो गोल बना दे, लेकिन जैसे हमने पहले भी कहा एक्सपेक्टेशन, बट विदाउट गेटिंग डिपेंडेंट ऑन द एक्सपेक्टेशन. कि एक्सपेक्टेशन रखी, लेकिन साथ साथ ये भी तैयारी कर ली कि अगर पूरा नहीं हुआ तो आई एम नॉट गोइंग टू गेट हर्ट. सो सिमिलरली गोल बनाना है, आप गोल बना दें, लेकिन लिविंग इन द
0: प्रेजेंट.
1: ये नहीं ये होगा तो खुशी मिलेगी. यू नो क्या होता है, गोल्स बनाना मतलब हमारा सारा लक्ष्य क्या हो जाता है,
0: उसी
1: किसी तरह
0: हाँ.
1: वो गोल पूरा हो जाए.
0: एक्चुअली फिर हम किसी भी परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होते. अमेजिंग है कि वी एक्चुअली हम इतने रिजिड हो जाते हैं फिर.
1: नहीं, और क्या होता है वो गोल को, क्योंकि मैंने ये थॉट प्रोग्रामिंग कर ली कि ये गोल जब अचीव होगा तब खुशी मिलेगी, तो मैं उस गोल को अचीव करने के लिए फिर कुछ भी करते जाऊंगे. नाउ इन द प्रोसेस आई कैन गो थ्रू स्ट्रेस, आई कैन क्रिएट एंगर, आई कैन हैव प्रॉब्लम्स इन रियल, लेकिन मुझे किसी भी तरह उस गोल को क्रिएट करना है. क्यों? क्योंकि मेरी खुशी वहां खड़ी है. यू सी, सो हाउ हेल्दी इज दिस फॉर मी, दिस आई हैव टू चेक कि मेरी एनर्जी कितनी डिप्लीट होती जा रही है. तो अगर हम एक दिन ट्राई करें इस बिलीफ सिस्टम के साथ कि मेरा जो बेस्ट मोमेंट है वो ये वाला मोमेंट है. आई डोंट हैव टू वरी अबाउट द फ्यूचर, आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट द पास्ट, आई हैव टू एंजॉय विद द फर्म बिलीफ कि मेरे साथ जो भी होने वाला है
0: वो अच्छा
1: अच्छा होने वाला है. क्यों मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है? अगर मैं एनर्जी ही अच्छी क्रिएट कर रही हूँ अभी, तो एनर्जी जो बाहर जाएगी वही एनर्जी वापस आने वाली है. सो आई क्रॉस एवरी मोमेंट विद द फर्म बिलीफ कि मेरे साथ जो भी होने वाला है वो अच्छा ही होने वाला है. ये मुझे अभी कैसा फील कराएगा?
0: गुड,
1: बहुत लाइट लाइट. आई टेक लाइफ इन अ क्रिएटिव वे, यू नो, कि हर पल ये हल्केपन से खेलते हुए. लाइफ इज मेंट टू बी एंजॉयड. हमने उसको बहुत सीरियस, यू नो, सीरियस वो क्यों कर दिया? क्योंकि भविष्य, भविष्य का डर, नहीं हुआ तो क्या. एक एक पल को जीते जाएं प्रेजेंट में. ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, करके देखना है कि एक दिन आने वाले कल के बारे में ना सोचकर आज को देखें. आज में भी हर पल को देखते जाएं तो आपका अगला पल अपने आप अच्छा होने वाला है.
0: और उसमें कोई भी सिचुएशन भी आ जाएगी. सपोज आज मैं ठीक हूँ, लेकिन अगले ही पल कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, उसे हैंडल करने की भी मेरे पास शक्ति होगी क्योंकि मैं स्ट्रेस में नहीं हूँ. यू नो, कई बार क्या होता है, क्योंकि हम देख ही नहीं पाते उस सिचुएशन को.
1: हर सिचुएशंस देखो आने वाली है, चैलेंजेस आने वाले हैं, लेकिन क्योंकि हमें वो अभ्यास नहीं है उस प्रेजेंट मोमेंट में रहने का, तो वो सिचुएशन आते ही भी हम बहुत सारा क्रिएट कर लेते हैं.
0: अब क्या होगा,
1: अब क्या होगा, अब क्या. एंड एक्चुअली सिचुएशन बहुत बड़ी नहीं होती है कोई भी. ये जिस फाइनेंशियल क्राइसिस की भी हमने बात की थी, इसको फेस प्रेजेंट मोमेंट में रहकर करना है, लेकिन सारी एनर्जी किस में वेस्ट हो जाती है. हम कहते हैं ना, एंथुजियाज्म खत्म, मोटिवेशन खत्म. क्यों? सारी एनर्जी किस में हो गई? अब क्या होगा, आगे क्या होगा? सेविंग्स खत्म हो गई तो बच्चों की
0: पढ़ाई. हमने पूरा विजुलाइज भी कर लिया होता है. हर बार कोई सिचुएशन आते हैं, हम पहले फ्यूचर ही विजुलाइज करते हैं. तो समवेयर वी रियली नीड टू चेक. शिवानी, थैंक यू सो मच. और अगर आपके पास कोई बात, कोई सवाल है, या तो फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही. लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट बात हमें समझ में आई है कि जिस पर हमारा फ्यूचर डिपेंड कर सकता है कि मेरा आज कैसा होगा. स्टॉप थिंकिंग अबाउट फ्यूचर. एक्चुअली वो प्लानिंग करना एक दिन के लिए बंद करके देखें, फिर अपना अनुभव हमें भी लिखें और खुद लोगों के साथ भी शेयर करें और खुद समझें भी. आज इतना ही, आगे मुलाकात होगी. ओम शांति.

नमस्कार, ओम शांति। विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, इसके ऊपर हमारी चर्चा शुरू थी। हमने विश्व के बारे में चिंतन किया, स्वधर्म के बारे में चिंतन किया और पिछले एपिसोड में सूर्य के बारे में भी चिंतन किया।

धर्म को देखा, विश्व को देखा। अभी विश्व, स्वधर्म, सूर्य, तीनों को अगर जोड़ के देखेंगे तो हमें और उस गहनता तक जाने के लिए मदद मिलेगी। देखिए, सूर्य जो है ग्रह माले का जो सोलर सिस्टम है उसमें से ग्रह सूर्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज इट गिव्स एनर्जी टू एवरीबडी। कंटिन्यूअस एनर्जी उससे मिलती है, उसके सोलर एनर्जी बोलते हैं, और इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं रहता। भले हम सन कहेंगे, सूरज कहेंगे, सूर्य कहेंगे, और कोई भाषा में और कुछ कहेंगे, लेकिन उससे कोई ये मेरा सूरज है, ये आपका सूरज है, ये मेरा सन है, ऐसा कभी डिस्प्यूट सुना है हमने? नहीं है। सूरज जो है उससे एनर्जी हर कोई लेता है एंड एवरीबडी इज हैप्पी। भले किसी से ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं, भारतीय संस्कृति में सूरज को भगवान का रूप दिया गया है और सूरज को इसलिए भगवान मानते हैं। अभी ये सूरज जो है उसे भगवान मानते हैं, लेकिन सचमुच ही भगवान है या भगवान कोई और कोई है? सूरज की उपमा दी है क्योंकि ऐसे सूरज सर्व ग्रहों में श्रेष्ठ है, वैसे भगवान भी सबसे ऊंचा है, इसलिए ऊपर वाला सर्वशक्तिमान कहते हैं उनसे। और मुझे लगता है माउली ने जो सूर्य का शब्द प्रयोग किया है उसके पीछे यही राज है। उनको सूरज जो अभिप्रेत है, विश्व स्वधर्मे सूर्ये पाहो, ये सूर्य जो है वो भगवान के बारे में, वो भगवान को देखते हैं और वो अभिप्रेत है उनको। अभी अगर सूर्य, सूरज इक्वल टू भगवान और भगवान इक्वल टू सूरज और भगवान का नाम ही सूरज, ऐसे अगर विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो में है, तो अभी पूरा का पूरा अर्थ देख लीजिए। विश्व, सारे विश्व में भगवान के अलग अलग रूप है, भगवान की अलग अलग मान्यताएं है, नाम अलग अलग है, पहचान अलग अलग है, और शायद सही पहचान न होने के कारण या अलग अलग पहचान होने के कारण या उसके जो कर्म है वो अलग अलग होने के कारण या उसका जो कार्य है उसका पूरा पूरा ज्ञान न होने के कारण शायद हमारे में लड़ाई है, झगड़ा है। ये हमारा भगवान है, ये आपका भगवान है, और ऐसे नहीं कि सिर्फ चार धर्म जो है मेन मुख्य धर्म जो मानते हैं हम चार, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसमें भगवान अलग है, ऐसे नहीं है। अभी हिंदुओं में भी इतने देवताएं हैं, फिर भगवान क्या है, देवता क्या है, ये भी कंफ्यूजन है। और इसलिए सूर्य जो है, सूर्य के बारे में कभी कंफ्यूजन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भगवान के बारे में है। अगर भगवान इक्वल टू सूरज और सूरज इक्वल टू भगवान ये हम सोचते हैं, तो विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, शायद मुझे ऐसे लगता है माउली को ये अभिप्रेत है कि अगर जिस दिन सारा विश्व अपने स्वधर्म में स्थित, स्वधर्म मीन्स आत्मा का धर्म, शांति का धर्म, आत्मा का धर्म है शांति, पिछले एपिसोड में हमने देखा था, तो आत्मिक स्थिति में सारा विश्व अगर स्थित हो जाता है और सूर्य जो है, भगवान जो है, उनको देखता है, तो भगवान का सही ज्ञान सबको हो जाता है। विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, और ये रिक्वेस्ट या ये विजन एक दिन ऐसे आएगा। माउली को भी लगता है कि सारा विश्व जो है, हम सिर्फ कहते हैं गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ, सत्य,

सत्यमेव जयते, भगवान की विजय होगी, अंतिम विजय भगवान की होगी। अगर भगवान सत्य है, गॉड इज ट्रूथ, ये सही है, तो विजय किसकी होगी? अंतिम भगवान की होगी। और यही विजय जो है, और इसलिए देखिए सत्य युग कहा जाता है। भगवान को सत्य कहते हैं और युग को भी सत्य कहते हैं। और पांडव देखिए, पांडव में भले उनका जो श्रेष्ठ था, पांडव में बड़ा दादा, उसका नाम था युधिष्ठिर, लेकिन उनको भी कहते हैं धर्मराज। तो ये धर्म हो या सत्य हो या भगवान हो, उनकी विजय होगी। मीन्स जो अच्छाई की बुराई पर विजय होगी। और ये स्वधर्मे, विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, सारा विश्व जो एक मुख से अगर भगवान को पहचान लेगा, ज्ञान भगवान के बारे में मिलेगा, तो क्या होगा? बुराई रहेगी नहीं, कोई लड़ाई नहीं रहेगी, कोई दुराचार नहीं रहेगा, कोई अशांति नहीं रहेगी, और सब अपने शांत स्वभाव में, शांति के धर्म में स्थित हो जाएंगे। तो सबके विचार क्या होंगे? विचार भी एक होंगे। और इसलिए बोलते हैं एक विचार तो एक आचार हो जाएगा, एक उच्चार हो जाएगा, और सब जहां एक होते हैं, यूनिटी। जब यूनिटी हो जाती है तब हर चीज आसान हो जाती है, और विश्व परिवर्तन जो है वो भी आसान हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा था, माउली का जो पसायदान है उसमें जो रोड मैप है या रिक्वेस्ट है, तो ये रोड मैप यहां पूरा हो जाता है सब्जेक्ट टू कंडीशंस। क्या क्या है? आता विश्वात्मके देवे, उन्होंने विश्वात्मक देव को बताया, मांगा, येने वाग यज्ञ तोषावे, मेरे वाग यज्ञ जो है उससे आप संतुष्ट हो जाओ, और मुझे पसायदान दो, मुझे दान दो, मुझे क्या दो? ब्लेसिंग्स दो, मुझे आशीर्वाद दो। आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे, तोषो निमज द्यावे पसायदाने, जे खळांची व्यंकटी सांडू तया सत्कर्मी रती वाढू, भूता परस्परे जडो मैत्र जीवांचे। ये भी देखा हमने। फिर दुरितांचे तिमिर जावो, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो। ये जब हो जाएगा तब स्वर्ग आ जाएगा, सतयुग आ जाएगा। और ये सतयुग कैसा है उसका वर्णन अगले कड़ी में। तो ये जो ओवी है, विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, उसके ऊपर जब चिंतन करेंगे तब लगता है, मुझे लगता है कि ये कंडीशन हो जाएगी, विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, सब एक रूप हो जाएंगे, एक मुख से बोलने लगेंगे, तो आगे क्या होगा? जो जे वांछील तो तेला हो प्राणी जात। आजकल हम बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन सब होता नहीं है। हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, क्योंकि शायद ऐसे कहते हैं कि आपकी इच्छा आपको अच्छा नहीं बना देती। और जब मुझे पूरा ज्ञान हो जाता है, परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, तो कोई इच्छा ही नहीं रहती और सब अच्छा हो जाता है। इसलिए जो जे वांछील तो तेला हो प्राणी जात, क्योंकि इच्छा ही अच्छी होगी। आजकल हमारी इच्छाएं अच्छी होगी उसकी गारंटी नहीं है, इसलिए कभी होती है पूर्ण या कभी नहीं होती है। लेकिन वो स्टेज जो माउली को अभिप्रेत है, जब विश्व स्वधर्म में, सारा विश्व अपने स्वधर्म में स्थित होके सूरज को देखने लगेगा, पहचानने लगेगा, तब जो मन में इच्छा है, जो जे वांछील तो तेला हो प्राणी जात, ये पूर्ण हो जाएगा। और फिर कैसे होगा ये स्वर्ग का रोड मैप, कैसे होगा स्वर्ग का दर्शन, कैसे होगा, वो अगले कड़ी में हम देखेंगे। तो यहां अपनी चर्चा
हम पूरी करेंगे विश्व स्वधर में सूर्य पाहो, और अगले कड़ी में अगले चरण के ऊपर चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम।

0: प्रत्येक सडातील पहिल्या काही धारा स्वतंत्र कपात काढाव्या व नंतर दुधाच्या भांड्यात दूध काढावं. कपात काढलेलं दूध साधारणतः 20 ते 25 मिली फेकून द्यावं, कारण यात जंतूचं प्रमाण जास्त असतं. दूध काढण्याची प्रक्रिया पूर्ण मूठ पद्धतीनं सुमारे 7 ते 8 मिनिटात पूर्ण करता येते. दूध काढण्यासाठी विशिष्ट आकाराची भांडी आपण वापरली पाहिजे. दूध काढताना जनावरास शक्यतो वाळलेली वैरण घास खायला घालू नये, फक्त आंबवून द्यावं. स्वच्छ दूध कोरड्या स्टीलच्या भांड्यात काढून घ्यावं. ही झाली काही पायाभूत मूलभूत माहिती की बाबा दूध काढताना कोणत्या गोष्टीची आपण काळजी घ्यायला पाहिजे. या संदर्भामध्ये विस्तृत तांत्रिक मार्गदर्शन आपल्याला जर आवश्यक असेल तर कृषी विज्ञान केंद्र करडा येथील पशुविज्ञान शाखा जी आहे त्याचे जे कार्यक्रम सहायक आहेत यांच्याशी जर आपण संपर्क केला तर आपल्याला अधिक चांगल्या प्रकारे त्याच्याविषयी मार्गदर्शन मिळू शकतं. तर आपण ह्या सर्व बाबी समजून घ्या आणि शास्त्रज्ञ मार्गदर्शनाखाली वापरा. नमस्कार.
1: कृषी संदेश.
2: रेडिओ मन भावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग.
3: नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो. दोस्तों, हम अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए न जाने क्या क्या जतन करते हैं, कितने ही श्रृंगार करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने उस श्रृंगार के बारे में सोचा है जो आत्मा की शोभा बढ़ा दे. कबीर साहब आज ऐसे तिलक की बात कर रहे हैं जिसे लगाने के बाद तीनों लोकों में आपकी शोभा बढ़ जाती हैं. आज का दोहा सुमिरन के गौरव का उत्सव है. श्रोताओं, कबीर आज भक्ति को एक आभूषण के रूप में देख रहे हैं. वे बता रहे हैं कि राम का नाम केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक दिव्य अलंकार है. तत् तिलक तिहु लोक में राम नाम निज सार, जन कबीर मस्तक दिया शोभा अधिक अपार. तत् तिलक तिहु लोक में राम नाम निज सार, तत् तिलक तिहु लोक में राम नाम निज सार.

श्रोताओं, इस दोहे का सौंदर्य अद्भुत है। कबीर कहते हैं, तत् तिलक तिहुं लोक में, यानी यह जो तत्व का तिलक है उसकी चमक केवल इस पृथ्वी पर नहीं बल्कि तीनों लोकों में है। और वह तत्व क्या है? राम नाम निजसार, परमात्मा का नाम ही वह असली तत्व है, वही जीवन का निचोड़ और सार है। कबीर आगे कहते हैं, जन कबीर मस्तक दिया, जब कबीर ने इस राम नाम रूपी तिलक को अपने मस्तक पर धारण किया, यानी अपनी बुद्धि और अपने विचारों को उस परमात्मा में समर्पित कर दिया, तो क्या हुआ? शोभा अधिक अपार, उनके जीवन की, उनके व्यक्तित्व की शोभा इतनी बढ़ गई कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दर्शन की दृष्टि से देखें तो मस्तक पर तिलक लगाना स्मृति और सजगता का प्रतीक है। जब राम का नाम हमारी स्मृति में, हमारे मस्तक में बस जाता है, तो हमारा पूरा जीवन प्रकाशित हो उठता है। यह वह सौभाग्य है जिसे पाने के बाद संसार की सारी चमक फीकी लगने लगती है। कबीर यहाँ सिखा रहे हैं कि असली सौंदर्य चेहरे का नहीं बल्कि उस नाम का है जो आपके भीतर गूंजता है। जो उस तिलक को लगा लेता है वह जगत में अनमोल हो जाता है। दोस्तों, हम रोज

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज फिर आप सबका स्वागत। कौन सी ऐसी बातें हैं जो मेरी खुशी मुझसे छीन लेती हैं, या मैं देखूं तो मैं खुश नहीं रह पाता। उसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आई थी वो थे मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस। कहीं ना कहीं जो गुजर गया, जो कल था, उसे ऐसे पकड़ा हुआ था मैंने जब लेट गो किया या उस पास्ट को प्रेजेंट नहीं बनने दिया, तो मेरी खुशी फिर मैं क्रिएट कर पा रहा था। अब आगे बढ़ते हैं और फ्यूचर की तरफ देखते हैं। फ्यूचर यानी मेरी प्लानिंग मेरे जीवन का आधार हो जाता है कि मुझे यहाँ यहाँ यहाँ यहाँ ये सब कुछ करना है। तो क्या उसको करते हुए भी मैं कहीं अपनी खुशी से तो परे नहीं जा रहा? कोशिश करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: पास्ट को तो हमने मान लिया, हम सब जानते हैं सिस्टर शिवानी की पास्ट को नहीं पकड़ कर रखना चाहिए। और बहुत अच्छी तरह से हमारे सामने पिछले कई कड़ियों में ये बात आई कि क्या ऐसा प्रोसीजर है कि हम जो गुजर गया उसे जाने दें और उसे अपना प्रेजेंट ना बनाएं। लेकिन फ्यूचर प्लानिंग तो हर कोई करता है। फ्यूचर प्लान्स की बात करते हैं, गोल्स की बात करते हैं, अचीवमेंट्स की बात करते हैं, और फिर एक लक्ष्य साध कर उस पर आगे बढ़ते जाना। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि मैं अपने फ्यूचर को ध्यान में रखता हुआ अपनी आज की स्टेबिलिटी को मेंटेन कर पाऊं।
1: Yeah, very important, क्योंकि इस पर जब हम बात करें तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मुझे लगता उठने वाले हैं कि क्या फ्यूचर प्लान नहीं करें। अलग अलग तरह से हम इसको देखते कि कैसे हम, जैसे हमने पिछली बार देखा कि हम पास्ट में बहुत ज्यादा जीते हैं, हम यहाँ हैं लेकिन मन पास्ट के बारे में सोच रहा, उतना ही हम देखते कि हम फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा जीते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं खुशी को जब हम ढूंढते हैं तो खुशी को हम फ्यूचर में बहुत ढूंढते हैं। आई एम नॉट हैप्पी नाउ बट आई विल बी हैप्पी
0: इफ दिस थिंग हैपेंस, वंस आई अचीव दिस।
1: सो व्हेन आई से आई विल बी हैप्पी व्हेन दिस हैपेंस, आई हैव पुट माय हैप्पीनेस इनटू द फ्यूचर, एंड तब मेरा सारा ध्यान ये होता कि ये होगा तो खुशी होगी। अब दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, अगर ये होगा तब खुशी होगी। जब ये थॉट आती तो साथ में ये भी थॉट आ जाएगी, अगर नहीं हुआ तो यू सी व्हेनेवर देयर नो इट कुड बी फियर, इट्स ओनली अ फियर
0: एंड आई विल नॉट बी हैप्पी, यू नो इट विल टेक अवे माय हैप्पीनेस।
1: दैट इज व्हाट वी सॉ अर्लियर, कि जब भी हैप्पीनेस किसी चीज पर डिपेंडेंट होती है तब फियर ऑटोमेटिकली आ जाता, क्योंकि जहां डिपेंडेंसी है वहां ये इनसिक्योरिटी तो होने ही वाली है कि अगर वो नहीं हुआ तो, या अगर वो चले गए तो, व्हाटएवर। सो डिपेंडेंसी एंड इनसिक्योरिटी ये साथ साथ जाएंगे। जहां मेरी किसी चीज पर डिपेंडेंसी है तो एक थॉट अंदर इनसिक्योरिटी का साथ साथ आ ही जाएगा। तो हैप्पीनेस एंड फियर कैन नॉट बी टुगेदर। आई एम लुकिंग फॉर हैप्पीनेस देन, दैट मीन आई एम नॉट हैप्पी नाउ, आई एम सेइंग ये होगा तो आई विल बी हैप्पी, लेकिन नाउ व्हाट एम आई क्रिएटिंग? साथ साथ मैं वो फियर के थॉट्स भी क्रिएट करना शुरू कर देती कि अगर ऐसा हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो, अगर नहीं हो पाया, अगर वो नहीं कर पाए, अगर वो कल मेरे साथ नहीं हुए। सी, बहुत सारी चीज़ें हमें जीवन में मिली हैं लेकिन हम बहुत बार फियर में जीते हैं कि कहीं ये हमारे से छूट ना जाए। तो उस प्रोसेस में क्या होता, हम उनको प्रेजेंट में, सी, फियर ऑफ लूजिंग जॉब, फियर ऑफ लूजिंग प्रॉपर्टी पोजेशन, फियर ऑफ लूजिंग फैमिली, कहीं मेरे परिवार को कुछ ना हो जाए, एंड सबसे ज्यादा फियर कहीं मुझे कुछ ना हो जाए। अब इन सारे लिस्ट ऑफ फियर्स में हमें ये भी पता है कि एक ना एक दिन सारी चीजें जो मिली हैं वो जाने ही हैं, लेकिन वो जब तक मिली हैं उनको इंजॉय करने की बजाय मैं फ्यूचर को एंटिसिपेट कर करके अभी क्या क्रिएट करती? See, once we understand happiness creation है यहाँ पर, happiness is not outside, तो मुझे सिर्फ सारा दिन क्या चेक करना है, मेरी thoughts क्या है, मेरी thoughts क्या है। तो अब जितनी देर मैं ये सोच रही हूँ ये होगा तो, साथ में दूसरी thought ही आएगी
0: अगर ये नहीं हुआ तो।
1: तो अब जब मैं fear, वैसे भी जब मैं सोच रही हूँ कि ये होगा तो अभी मैं खुश नहीं हूँ, मैं अपने आप को ये कह रही हूँ ये होगा तो खुशी होगी, तो अभी का इमोशन कौन सा है? फियर का है। तो इसलिए हर पल हमने देखा, इस पल में अगर हम इस पल के बारे में सोच रहे हैं नेक्स्ट वाले, तो ये पल कैसा बीता? डर में। तब तक फिर यहाँ गए, तब कौन से पल के बारे में सोचा? नेक्स्ट वाले।
0: तो एंटिसिपेशन में, डर में, डर में, ये होगा।
1: ऐसे करते करते आपकी पूरी जर्नी किस में बीती?
0: और वो पल तो निकलते ही गए। मैंने सोचा था कि एक साल के अंदर अंदर ये होगा।
1: देखो, अलग अलग तरह से हम फ्यूचर के बारे में सोचते। एक होता है जो लोग बहुत चिंता करते हैं, जो मेरे को लगता है हम सब चिंता करते हैं, वरी, वेरी वरी काइंड ऑफ पर्सनालिटी. जो वरी करते हैं वो किसके बारे में सोच रहे हैं?
0: फ्यूचर
1: के बारे में सोच रहे हैं. अगर ये हुआ तो एक दिन सिर्फ चेक करना कि वरी की जो थॉट्स होती हैं उसमें होता क्या है, किस तरह की हम थॉट क्रिएट करते. हम आने वाले पल के बारे में, फ्यूचर के बारे में एक इमेज क्रिएट कर देते, वो इमेज अच्छी नहीं होती है. चिंता मतलब कि कुछ बुरा होने वाला है, चिंता मतलब कुछ अच्छा होने वाला है, ये थॉट नहीं आएगा. तो चिंता मतलब कुछ ट्रेजेडी, कुछ कैटास्ट्रोफ, कुछ गड़बड़ वाला होने वाला है. वो इमेज हम अभी क्रिएट कर देते और अभी इस पल उस इमेज को देख देख के
0: डरते
1: रहते हैं. सो आई बेसिकली क्रिएट अ फ्यूचर इमेज, नॉट अ प्लेजेंट वन, एंड आई यूज दैट पिक्चर इन माय प्रेजेंट मोमेंट एंड आई क्रिएट पेन. सो माय एवरी मोमेंट वरिंग अबाउट द नेक्स्ट मोमेंट, माय एवरी मोमेंट इज पासिंग इन पेन बिकॉज आई एम क्रिएटिंग अ पिक्चर ऑफ.
0: सपोज आई एम वेरी पुअर, यू नो, मेरे घर में सब क्योस है, मेरे जीवन में क्राइसिस आया हुआ है जिसको मैं कुछ नहीं कर पा रहा. दैट इज द टाइम व्हेन आई, यू नो, अपना काम तो कर्म तो करता ही रहूंगा, लेकिन यू नो यू कीप ऑन एंटिसिपेटिंग योर फ्यूचर एंड वेयर यू सी दैट यू नो यू विल गेट मनी, ये चीजें सॉर्ट आउट होती जाएंगी, होता जाएगा. एटलीस्ट इट्स गिविंग मी हैप्पीनेस फॉर दैट टाइम, बिकॉज अभी जो मैं चाह रहा था वो नहीं हो रहा.
1: इसको हम कहेंगे ड्रीमिंग पर्सनैलिटी. कि आप अभी यहाँ है लेकिन यहाँ आप टुमोरो में है. यू ऑलरेडी गॉन टुमोरो एंड यू विल फाइंड पीपल हु लव टू बी इन देयर टुमोरो. जिसको हम कहेंगे ये तो ख्वाबों में ही रहते हैं अपने ज्यादा दिन. क्यों वो ख्वाबों में रहते हैं? उनको आज पसंद नहीं है, दे आर इन पेन. सी व्हेन विल आई एस्केप फ्रॉम टुडे एंड लिव इन द टुमोरो.
0: आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर एक्चुअली, यू नो, वी डोंट वांट टू लिव इन द प्रेजेंट.
1: ईच वन नीड्स टू चेक. हर एक अपना अपना देखेगा.
0: व्हाई वी डोंट वांट टू लिव इन प्रेजेंट?
1: क्योंकि अभी मेरे अंदर दर्द है, मैं उस दर्द के ऊपर काम नहीं करना चाहती हूँ, मैं मेहनत नहीं करना चाहती हूँ इससे, पर मैं फील तो अच्छा करना चाहती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ
0: कहीं पे भी. हाँ, किसी
1: वी टेकिंग डिफरेंट डिफरेंट वेज ऑफ स्विट, यू नो, एस्केपिंग दीज थॉट्स ऑफ पेन. जो हमने देखा, चाहे टीवी देखना है, चाहे हॉलीडे पर जाना है, वो ये क्या कर रहा था? वो ये कर रहा था कि ये अभी वाली जो दर्द वाली थॉट्स हैं, इनको थोड़ी देर के लिए, एटलीस्ट चलो घंटे के लिए भी, एटलीस्ट एक घंटे के लिए मैं इनको साइड पे करूँ, मैं कुछ और देखूँ, आई विल फील गुड. जितनी देर मैं फ्यूचर के बारे में सोचती हूँ, सपोज मैं 15 मिनट, अभी मैं बहुत दर्द में हूँ लेकिन मैंने माइंड को अपने अगले साल में शिफ्ट कर दिया और मैं फ्यूचर के बारे में सोचते गई, एंड आई क्रिएट अ ब्यूटीफुल फ्यूचर. तो 15 मिनट क्या हुआ? आई एस्केप्ड, आई रैन अवे फ्रॉम माई प्रेजेंट थॉट्स ऑफ पेन एंड आई लिव्ड इन द फ्यूचर एंड आई क्रिएटेड अ वेरी ब्यूटीफुल फ्यूचर. आई फेल्ट नाइस आफ्टर दैट.
0: आई कम बैक रिफ्रेश्ड. But can I, can't I
1: don't come back refreshed. I come back even more in pain. क्योंकि ऐसे
0: ये तो अभी बचा है यहाँ पे,
1: अभी तो नहीं है ना. लेकिन जो भी हम कहते हैं ना, पास्ट की भी मेमोरीज, चलो आज बहुत दर्द में है लेकिन पिछला साल बहुत अच्छा बीता था, राइट? तो चलो पिछले साल को याद करके मुझे बहुत अच्छा लगता है. 10 मिनट याद कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा. 11वां मिनट क्या हुआ? दर्द हो गया. लेकिन अभी तो नहीं है ना वो
0: अभी क्यों नहीं आ सकता? एंड देन दिस, यू नो, कि वही चीज क्यों नहीं हो जाती?
1: पेन इज इन द प्रेजेंट मोमेंट. तो मुझे एड्रेस भी उसको कहाँ करना पड़ेगा, उसको फेस भी कहाँ करना पड़ेगा? यहाँ. अगर इफ आई कीप रनिंग अवे फ्रॉम माय पेन, दैट्स नॉट द सॉल्यूशन. बीमारी है, लेट्स एड्रेस द इलनेस. बीमारी को ठीक करते हैं. ख्वाबों की दुनिया में जी के कि ये ठीक हो जाएगा तो ऐसा होगा, ठीक हो जाएगा. और अगर आज उसको ठीक नहीं किया तो अगर आप सोचते भी रहे कि ये कल ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा. अगर आज हम दर्द में हैं और अगर हमने उसको ठीक नहीं किया अपने थॉट्स को, तो कल कौन सी थॉट्स होंगे? सिचुएशंस चेंज हो जाएंगी. सी, हम क्यों कल के बारे में सोचते? क्योंकि हमने सोचा खुशी परिस्थितियों पे डिपेंडेंट है. तो आज परिस्थिति ठीक नहीं है, मैं दर्द में हूँ, लेकिन आई एंटिसिपेट कि कल परिस्थिति ठीक हो जाएगी. एंड मैं कंक्लूजन ये ले आती हूँ कि जब परिस्थिति ठीक हो जाएगी तो कल मैं खुश होंगी. व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज कि यस, परिस्थितियां कल बहुत अच्छी हो जाएंगी. जो आपने जैसे कहा कि समवन इज वेरी पुअर, आज उनके पास धन नहीं है, हो सकता है जैसे वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कल उनके पास बहुत धन आ जाए. वेरी गुड, बट इट डज नॉट मीन कि उनके पास तब बहुत खुशी भी आ जाएगी. खुशी यहाँ की क्रिएशन है और उसको हमें हर पल में क्रिएट करना होगा. अगर हमने आज उसको नहीं क्रिएट किया, बिकॉज थॉट इज अ सीरीज ऑफ थॉट, तो अगर मेरा दिस थॉट इज इन पेन, देन माय नेक्स्ट थॉट will automatically be in pain. Then the next thought will automatically be in pain. And that's why we say, if today is in pain and aaj usko address nahi kiya, to tomorrow will automatically still be in pain. Aap kitna bhi sochte jao ki bahut acha ho jayega, bahar acha ho jayega, lekin yahan to fir bhi dard create hoga.
0: Nahi to ye kaha jata hai ki sapno mein rehna chahiye ya sapne lene to chahiye kam se kam. So again, I just want to know ki whether it's a right personality, right way of looking.
1: Escaping from the present. What is, you know, fantasizing bahut zyada bhavishya ke bare mein, escaping from the present. So how far would that be beneficial for me? Again, main energy, main apni wo thought power use kar raha hu kuch aisi cheez ko create karne mein jo ki mere control mein
0: hai hi nahi.
1: Mere control mein sirf ye wala pal hai aur is pal mein meri sthiti, ye mere control mein hai, iske ilawa mere control mein कुछ भी नहीं.
0: बट क्रिएटिविटी तो ये कहा जाता है कि यू नो, क्रिएटिंग योर ओन ड्रीम्स,
1: क्रिएटिंग योर मोमेंट राइट नाउ. आप आज क्रिएट करते जाओ, आज से आपका कल ऑटोमेटिकली अच्छा क्रिएट होता जाएगा. सी व्हाट वी डोंट अंडरस्टैंड, दिस इज अ सीरीज. आज अच्छा फील कर रहे होगे, घर पहुंचोगे, सबके साथ अच्छे होगे, रात को नींद अच्छी आएगी, कल सुबह उठोगे अच्छा ही फील करोगे. लेकिन आज चिंता में बिता दिया, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, तो कल क्या होगा?
0: कल वो आ जाएगा जिसने मुझे खुशी देनी है.
1: खुशी देनी है, वो सिचुएशन आ जाएगी. लेकिन आज अगर मैंने चिंता क्रिएट की थी तो कल भी मेरे मानसिक स्थिति कैसी होगी?
0: और हो सकता है वो सिचुएशन जब तक आए तब तक मेरे सर में दर्द हो चुका,
1: और कल मेरे पास एक और कल है ना चिंता करने के लिए. सी, अगर मेरी आदत बन गई है चिंता करने की, तो दिस इज गोइंग टू गो ऑन विद मी टिल द एंड. Someone very beautifully said at the ending phase of their, you know, this particular birth, they said, I have spent all my life worrying about those things which never actually happened. Hum puri jeevan bitate hain un baaton ke bare mein soch ke chinta karke jo actually hui nahi. Jab wo hogi tab dekhenge na. Why do I create it beforehand? To fir hum kehte, main isliye chinta karta hu because I care. I worry because I care. To humne worry aur केयर को जोड़ दिया. केयर तो प्यार है, स्नेह की शक्ति है, और वरी फियर की शक्ति है. तो फियर और स्नेह ये इकट्ठे नहीं हो सकता. दीज आर टू एनर्जीज.
0: आई एम अफ्रेड एक्चुअली दैट आई विल लूज फियर.
1: सो ये जो चिंता करने की आदत है, भविष्य का क्रिएट करके अभी डर में जीने की आदत है, इससे हमारी बहुत सारी एनर्जी डिप्लीट हो जाती, और इससे मेरा प्रेजेंट मोमेंट डेफिनेटली दर्द में बीतता. दूसरा जो आपने कहा अचीवमेंट, अचीव करना है, वेरी गुड, आई वॉन्ट टू अचीव समथिंग. लेकिन उनको भी जो इस तरह की जीवन जीते हैं, जो डिपेंडेंट है अचीव करने में, तो क्या होता है उनका हर टाइम जो मानसिक स्थिति है ना, इट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट टू अचीव नेक्स्ट. यू नो, वो ऐसे नहीं बैठ पाएंगे विद नथिंग रियली हैपनिंग हियर, नेक्स्ट व्हाट टू अचीव, क्योंकि वो जो अचीवमेंट है वो उनको एक स्टिमुलेंट है, वो उनको एक किक देता है. समटाइम्स इट कुड बी रिकग्निशन, औरों का अप्रूवल, औरों से रिकग्निशन. समटाइम्स इट कुड बी जस्ट द रियलाइजेशन, हो गया ये मेरे से, ये भी हो गया. या समटाइम्स इट इज काम तो करते ही जाना है क्योंकि उसी से मुझे खुशी मिलती है. तो वो क्या करते हैं, अपना सेट करते जाते हैं, यू नो, टिक, चेकलिस्ट होती जाती है. ये हुआ, अचीव किया. जिस पल अचीव करते हैं तो एक रिलीफ एक्सपीरियंस होता है, चलो ये भी हो गया. ये रिलीफ है, ये खुशी नहीं है, पर ये भी बहुत थोड़ी देर रहेगी क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट, अब नेक्स्ट क्या अचीव करना है. तो जिन्होंने अपनी खुशी को इस अचीवमेंट पर भी डिपेंडेंट कर दिया, तो वो खुश भी नहीं होते उस पल, सिर्फ रिलीव्ड होते हैं, और वो भी लेकिन कितनी देर के लिए, शॉर्ट, नेक्स्ट मोमेंट, नेक्स्ट. सो वी वॉन्ट हैप्पीनेस टू बी एवरी
0: कॉन्स्टेंट, यस,
1: एवरी टाइम, नॉट फियर में या इनसिक्योरिटी में या एंटिसिपेशन में, नेक्स्ट क्या होगा, या ये भी करना है क्योंकि जब ये कर लूंगा तब खुशी होगी. तब उनका सारा फोकस किस पे शिफ्ट हो जाता है, अब क्या करना है नेक्स्ट. उस प्रोसेस में प्रेजेंट पल बीत जाता है. अब ऐसे लोगों के जीवन में अचीवमेंट्स बहुत सारी आ जाते हैं, दे अचीव अ लॉट, क्योंकि उनका फोकस ही लाइफ में वो है, ये अचीव करना है. लेकिन खुशी, दे नीड टू आस्क देमसेल्व्स दैट दे नो बेस्ट, कि उनका, क्योंकि वो जो पूरी यात्रा होती है फ्रॉम वन अचीवमेंट टू द नेक्स्ट अचीवमेंट, वो काफी
0: उसमें काफी वो जो फियर ऑफ यू नो लूजिंग, एंड देन जो मेरे पास है वो भी छूट जाएगा, या वहां तक पहुंच जाऊंगा तब, वंडरफुल आई थिंक
1: और वो कहीं ना कहीं उनकी खुशी उस अचीवमेंट पर बहुत डिपेंडेंट हो जाती है क्यों नो क्योंकि वो एक संस्कार बन गया
0: जब वो नहीं मिल रहा हो तो तब तक ऐसे रहते हैं ऐसे हो जाते हैं
1: और उस अचीवमेंट को पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं दिस इज वेयर अ लॉट ऑफ अस स्टार्ट मेकिंग कॉम्प्रोमाइजेस चाहे वो अपने वैल्यू सिस्टम पे है चाहे वो अपनी फैमिली पर है चाहे वो क्यों क्योंकि अचीव करना अचीव करना अचीव करना अचीव हो जाएगा खुशी पता नहीं इट्स अ क्वेश्चन मार्क दे हैव टू आस्क देमसेल्व्स एंड जैसे ड्रीम करना बहुत ज्यादा भविष्य के बारे में सोचना अनदर वेरी कॉमन थिंग जो हम करते हैं जो हम फ्यूचर में खुशी ढूंढते हैं दैट इज आवर डिजायर्स एवरीवन वी ऑल से के इच्छाओं के बिना तो जीवन कैसे बीत सकता है आई डिजायर फॉर दिस अगेन सेइंग ये होगा आई कुड डिजायर फॉर ऑब्जेक्ट कि ये मिलेगा तो खुशी आई कुड डिजायर फॉर मोर लव फ्रॉम पीपल आई कुड इवन डिजायर फॉर मोर टाइम और टाइम मिल जाए ना मुझे तो 24 घंटे ही कम पड़ते तो ये डिजायर्स की भी जो हमारी लिस्ट है वो बहुत लंबी होती जाती और कई बार तो पूरी भी होती जाती वो हमारी डिजायर लेकिन जितनी डिजायर्स पूरी होती उतनी लिस्ट
0: और बड़ी होती जाती
1: और भी लंबी होती जाती क्योंकि ये इच्छाओं के पीछे एक बहुत सूक्ष्म सटल जो थॉट है वो ये कि जब ये डिजायर मेरी अचीव हो जाएगी आई दैट सेल्फ विल बिकम कम्प्लीट यू नो व्हेन आई गेट दिस मोर फ्रॉम यू आई विल बिकम कम्प्लीट आई विल बिकम कंटेंटेड राजयोग हमें ये सिखाता आई द सेल्फ
0: इज ऑलरेडी
1: कैन नॉट बी कम्प्लीट बाय एनीथिंग आउटसाइड आई एम ऑलरेडी कम्प्लीट मुझे कुछ भी बाहर से नहीं चाहिए जिससे मैं कम्प्लीट
0: क्यों नहीं करते यू नो हम फील कम्प्लीट क्यों नहीं करते अगर हम है यू नो लाइक इफ वी अंडरस्टैंड दिस होल कॉन्सेप्ट तो हमें ये जो अर्च है बाहर से चाहे प्यार की चाहे ज्ञान की चाहे किसी भी चीज की या अचीवमेंट की ये फिर क्यों है
1: बिलीफ सिस्टम क्योंकि फीलिंग किस पे डिपेंडेंट है
0: बिलीफ
1: अगर मेरा बिलीफ ये है कि ये होगा तो आई विल फील गुड ये होगा तो आई विल फील कम्प्लीट So then I will feel like that only and I'll keep looking for
0: Let's
1: it.
0: Let's try to change that and say that I'm already full.
1: I'm complete, I'm full, I'm beautiful.
0: But how will I create that belief system now?
1: I create
0: By reinforcing it.
1: I create, abhi humne create kar diya already. Ab isko kya karna hai? Is belief system ko jeevan ki yatra mein leke chalna hai. Jaise hi koi thought aaye, ye hoga, to mujhe achha lagega. Immediately stop and tell yourself, वेरी गुड लेकिन मेरा फीलिंग इसके होने पर डिपेंडेंट नहीं है एक दिन इसको करके देखो यू विल सडनली स्टार्ट फीलिंग वेरी वेरी लिबरेटेड क्योंकि अभी तो हम इतनी चेन्स में बंधे हुए हैं कि ये सब होगा देन आई विल फील गुड एंड ये सब कुछ मेरे अनुसार
0: लेकिन जब हो रहा होता है तब तो वी फील बिकॉज वी हैव क्रिएटेड दैट We've created the thought कि अगर वो होगा तभी फील करेंगे इसीलिए जब वो होता है तो हम फील करते हैं
1: लेकिन उसके बाद फिर हमने एक और थॉट भी तो क्रिएट हो गया था अब ये होगा देन आई विल फील गुड सी जब से ही वो डिपेंडेंट है तो वो हमेशा ही डिपेंडेंट रहेगी तो जैसे ही सपोज आई एम डिपेंडेंट कि आप मुझसे अच्छी तरह से बात करें देन आई विल फील गुड तो आपने मुझसे बहुत अच्छी तरह से बात आई फील वेरी गुड लेकिन अब आई एम डिपेंडेंट कि आप हमेशा मुझसे अच्छी तरह से बात करेंगे दैट इज समथिंग I don't
0: I expected then,
1: And
0: you know.
1: then it's not only on you. Now I expect कि सब लोग हमेशा मुझसे बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे. How far is that in my control?
0: एक बार मेरा एक belief system ये reinforce हो गया कि मैंने ये सोचा था कि ये अच्छी तरह से बात करेंगे मैं feel good करूंगी वही हुआ तो अब हर जगह यही चले.
1: Absolutely.
0: तो again I think it can we can reverse it. इस पर मैं बात करती हूँ कि कैसे how to do that. लेकिन उससे पहले एक thought power की जब बात होती है कि whatever you want in life, you know, स्थूल में भी करें या जो भी चीज चाहिए उसको क्रिएट करो उस फ्यूचर को देखो और उसके बाद उसको विजुलाइज करो मतलब थॉट क्रिएट किया सपोज मुझे एक पोस्ट चाहिए अच्छा मेरे को अपना कंपनी का सीईओ बनना है आई क्रिएट दैट थॉट एंड देन आई स्टार्ट विजुलाइजिंग माई सेल्फ स्टार्ट लिविंग इन दैट एंड स्टार्ट लिविंग इन यू नो गिविंग इट ऑल विदाउट एनी ट्रेस ऑफ यू नो
1: डाउट
0: एंड इट हैपन्स And people are doing it now. I'm saying like it's so much in thing now.
1: True.
0: But then am I able to live in my present then?
1: It all depends how you're feeling that time. See, Some people are being able to achieve it, and yet at the same time, there are many, many people who are not being able to achieve this. Kyunki jaise hi, it's very good. Because
0: I tried this with myself. I was not able to achieve this.
1: Because once we understand thoughts create destiny, तो हमें जब ये समझ में आ गया तो हमने इसको किन चीजों के लिए यूज करना शुरू किया. आई क्रिएट अ थॉट तो मुझे ये मिलेगा, ये प्रमोशन मिलेगी, ऐसा हो जाएगा मेरे जीवन में. फिर हमने वो एनर्जी उसके प्रति क्रिएट करनी शुरू कर दी. लेकिन हम बहुत कम हैं जो उसमें एक भी थॉट ऑफ डाउट नहीं क्रिएट करते. क्योंकि जैसे हमने पहले देखा, ये होना ही चाहिए, ये हो, यू नो आई गेट अटैच टू द आइडिया कि ये मुझे मिलना ही चाहिए. तो कहीं ना कहीं एक थॉट तो दर्द की जरूर क्रिएट होती,
0: सपोज
1: नहीं मिला तो. एंड मैं बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाती हूँ उस प्रेडिक्टेड फ्यूचर पे, है ना. ये होना ही है, दिस हैज टू हैपन. इफ इट हैपन्स वेरी गुड, लेकिन बाय चांस नहीं हुआ तो. अगर वो नहीं हुआ, क्योंकि जब सब कुछ जो हो रहा है वो सारा कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं है. अब वो जब नहीं होता, आई गो एब्सोल्युटली. जब हम कहते हैं थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी, तो हमें ये समझना पड़ेगा जो थॉट्स मैं क्रिएट कर रही हूँ अभी, वो मेरी अभी की डेस्टिनी बना रहे हैं, अभी हाउ आई फील, एंड ऑल्सो वॉट इज गोइंग टू हैपन विद मी. एंड सिमिलरली अभी जो मेरे साथ हो रहा है, इट इज बेस्ड ऑन मेनी थॉट्स दैट आई हैव क्रिएटेड इन द पास्ट. अब क्या होता, मैंने अभी तो अपनी थॉट की क्वालिटी चेंज कर ली, लेकिन हो सकता है पहले मैंने बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी थॉट्स पहले क्रिएट की थी, विच हैज गॉन आउट इन टू द यूनिवर्स. जो हम कहते हैं ना, थ्रो दिस एनर्जी आउट इन टू द यूनिवर्स, तो वो भी तो बहुत सारी एनर्जी भेजी हुई है, विच इज ऑल्सो ऑन इट्स वे बैक. तो हम तुरंत रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, अभी मैंने ये थॉट क्रिएट किया, ये मेरे साथ हो जाना चाहिए. गेटिंग अटैच्ड टू समथिंग ऑफ द फ्यूचर, मोर इम्पोर्टेंट वुड बी अभी अपना ध्यान रखते जाएं, एक तो अंदर और एक तो बाहर. काम कर रहे हैं आप, एफर्ट कर रहे हैं, सिंसियरली कर रहे हैं, हर मोमेंट को इस मोमेंट में अच्छा बिताते जाएं. एंड देन आप देखेंगे जैसे जैसे एक पल अच्छा बीतेगा तो अगला पल अच्छा बीतेगा ही बीतेगा. ये पल अगर अच्छा ना तो नेक्स्ट पल तो बीतना ही है. एंड ये करने से आपके अंदर इतनी ताकत, इतनी शक्ति अक्यूमुलेट हो जाती है कि अगर सिचुएशन आपकी फेवर में नहीं भी आती, कोई भी सिचुएशन, आपके अंदर बहुत ताकत है उस सिचुएशन को फेस करने की. लेकिन हर पल अगर इस फियर में या एंटिसिपेशन में अगले पल के लिए बिता दिया, तो हम इतने कमजोर हो जाते कि जब कोई सिचुएशन हमारे सामने आती जो हमारे फेवर में नहीं है, आई डोंट हैव द पावर टू फेस सिचुएशंस. सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं. ऑल दैट वी आर ट्राइंग टू डू, इस पूरी सीरीज में हम क्या ट्राई कर रहे हैं, हम क्या ऐसा करें ताकि हम पावरफुल रहे, हम शक्तिशाली रहे, ताकि कुछ भी हो जाए, आई विल बी एबल टू रिमेन स्टेबल. अब जितना फ्यूचर के बारे में सोचेंगे जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो थॉट्स एम आई क्रिएटिंग, अगेन आउट ऑफ कंट्रोल थॉट्स, अगेन फियरफुल थॉट्स, एंटिसिपेटरी थॉट्स, एनर्जी डिप्लीट होती जा रही, डिप्लीट होती जा रही, तो फिर मेरे अंदर की जो शक्ति है कम होती जा रही है.
0: तो अगर तो हाउ टू गो अबाउट, वी हैव टू मेक आवर फ्यूचर प्लान्स, वी हैव टू मेक आवर गोल्स एंड वर्क फॉर देम आल्सो. सो व्हाट एनर्जी,
1: अगर गोल बनाना भी है आपने तो गोल बना दे, लेकिन जैसे हमने पहले भी कहा एक्सपेक्टेशन, बट विदाउट गेटिंग डिपेंडेंट ऑन द एक्सपेक्टेशन. कि एक्सपेक्टेशन रखी, लेकिन साथ साथ ये भी तैयारी कर ली कि अगर पूरा नहीं हुआ तो आई एम नॉट गोइंग टू गेट हर्ट. सो सिमिलरली गोल बनाना है, आप गोल बना दें, लेकिन लिविंग इन द
0: प्रेजेंट.
1: ये नहीं, ये होगा तो खुशी मिलेगी. यू नो क्या होता है, गोल्स बनाना मतलब हमारा सारा लक्ष्य क्या हो जाता है,
0: उसी की
1: किसी तरह
0: हाँ.
1: वो गोल पूरा हो जाए.
0: एक्चुअली फिर हम किसी भी परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होते. अमेजिंग है कि वी एक्चुअली हम इतने रिजिड हो जाते हैं फिर.
1: नहीं, और क्या होता है, वो गोल को क्योंकि मैंने ये थॉट प्रोग्रामिंग कर ली कि ये गोल जब अचीव होगा तब खुशी मिलेगी, तो मैं उस गोल को अचीव करने के लिए फिर कुछ भी करते जाऊंगे. ना इन द प्रोसेस आई कैन गो थ्रू स्ट्रेस, आई कैन क्रिएट एंगर, आई कैन हैव प्रॉब्लम्स इन रिलेशन, लेकिन मुझे किसी भी तरह उस गोल को क्रिएट करना है. क्यों? क्योंकि मेरी खुशी वहां खड़ी है. यू सी, सो हाउ हेल्दी इज दिस फॉर मी, दिस आई हैव टू चेक कि मेरी एनर्जी कितनी डिप्लीट होती जा रही है. तो अगर हम एक दिन ट्राई करें इस बिलीफ सिस्टम के साथ कि मेरा जो बेस्ट मोमेंट है वो ये वाला मोमेंट है, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट द फ्यूचर, आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट द पास्ट, आई हैव टू इंजॉय विद द फर्म बिलीफ कि मेरे साथ जो भी होने वाला है
0: वो अच्छा होगा,
1: वो अच्छा होने वाला है. क्यों मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है? अगर मैं एनर्जी ही अच्छी क्रिएट कर रही हूँ अभी, तो एनर्जी जो बाहर जाएगी वही एनर्जी वापस आने वाली है. सो आई क्रॉस एवरी मोमेंट विद द फर्म बिलीफ कि मेरे साथ जो भी होने वाला है वो अच्छा ही होने वाला है. ये मुझे अभी कैसा फील कराएगा?
0: गुड,
1: बहुत लाइट लाइट. आई टेक लाइफ इन अ क्रिएटिव वे, यू नो, कि हर पल ये हल्केपन से खेलते हुए. लाइफ इज मेंट टू बी एंजॉयड. हमने उसको बहुत सीरियस, यू नो, सीरियस वो क्यों कर दिया? क्योंकि भविष्य, भविष्य का डर, नहीं हुआ तो क्या. एक एक पल को जीते जाएं प्रेजेंट में. ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, करके देखना है कि एक दिन आने वाले कल के बारे में ना सोचकर आज को देखें. आज में भी हर पल को देखते जाएं तो आपका अगला पल अपने आप अच्छा होने वाला है.
0: और उसमें कोई भी सिचुएशन भी आ जाएगी. सपोज आज मैं ठीक हूँ, लेकिन अगले ही पल कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, उसे हैंडल करने की भी मेरे पास शक्ति होगी क्योंकि मैं स्ट्रेस में नहीं हूँ. यू नो, कई बार क्या होता है क्योंकि हम देख ही नहीं पाते उस सिचुएशन को.
1: हर सिचुएशंस देखो आने वाली है, चैलेंजेस आने वाले हैं, लेकिन क्योंकि हमें वो अभ्यास नहीं है उस प्रेजेंट मोमेंट में रहने का, तो वो सिचुएशन आते ही भी हम बहुत सारा क्रिएट कर लेते हैं.
0: अब क्या होगा,
1: अब क्या होगा, अब क्या. एंड एक्चुअली सिचुएशन बहुत बड़ी नहीं होती है कोई भी. ये जिस फाइनेंशियल क्राइसिस की भी हमने बात की थी, इसको फेस प्रेजेंट मोमेंट में रहकर करना है, लेकिन सारी एनर्जी किस में वेस्ट हो जाती है. हम कहते हैं ना, एंथुजियाज्म खत्म, मोटिवेशन खत्म. क्यों? सारी एनर्जी किस में हो गई? अब क्या होगा, आगे क्या होगा, सेविंग्स खत्म हो गई तो बच्चों की
0: पढ़ाई. हमने पूरा विजुलाइज भी कर लिया होता है. हर बार कोई सिचुएशन आते हैं, हम पहले फ्यूचर ही विजुलाइज करते हैं. तो समवेयर वी रियली नीड टू चेक. सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच. और अगर आपके पास कोई बात, कोई सवाल है, या तो फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही. लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट बात हमें समझ में आई है कि जिस पर हमारा फ्यूचर डिपेंड कर सकता है कि मेरा आज कैसा होगा. स्टॉप थिंकिंग अबाउट फ्यूचर. एक्चुअली वो प्लानिंग करना एक दिन के लिए बंद करके देखें, फिर अपना अनुभव हमें भी लिखें और खुद लोगों के साथ भी शेयर करें और खुद समझें भी. आज इतना ही, आगे मुलाकात होगी. ओम शांति.

नमस्कार। ओम शांति। विश्व स्वधर्मे सूर्ये पाहो, इसके ऊपर हमारी चर्चा शुरू थी। हमने विश्व के बारे में चिंतन किया, स्वधर्म के बारे में चिंतन किया और पिछले एपिसोड में सूर्य के बारे में भी चिंतन किया। हमने ये देखा कि माउली को सूर्य अभिप्रेत था यह ग्रह। सूर्य जो शब्द का प्रयोग किया है वह सिर्फ लिमिटेड है सूर्य ग्रह के हिसाब से या और कुछ अलग है, इसके ऊपर भी हमने चिंतन किया। अभी हम उसको तीनों को जोड़ेंगे, सूर्य को देखा, स्वधर्म को देखा, विश्व को देखा। अभी विश्व स्वधर्मे सूर्य तीनों को अगर जोड़ के देखेंगे तो हमें और उस गहनता तक जाने के लिए मदद मिलेगी। देखिए, सूर्य जो है ग्रह माले का जो सोलर सिस्टम है उसमें से ग्रह सूर्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बिकॉज इट गिव्स एनर्जी टू एवरीबडी। कंटिन्यूअस एनर्जी उससे मिलती है, उसके सोलर एनर्जी बोलते हैं और इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं रहता। भले हम सन कहेंगे, सूरज कहेंगे, सूर्य कहेंगे और कोई भाषा में और कुछ कहेंगे, लेकिन उससे कोई ये मेरा सूरज है, ये आपका सूरज है, ये मेरा सन है, ऐसा कभी डिस्प्यूट सुना है हमने? नहीं है। सूरज जो है उससे एनर्जी हर कोई लेता है एंड एवरीबडी इज हैप्पी। भले किसी से ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं नहीं दिखाते हैं, भारतीय संस्कृति में सूरज को भगवान का रूप दिया गया है और सूरज को इसलिए भगवान मानते हैं। अभी ये सूरज जो है उसे भगवान मानते हैं, लेकिन सचमुच ही भगवान है या भगवान कोई और कोई है? सूरज की उपमा दी है क्योंकि जैसे सूरज सर्व ग्रहों में श्रेष्ठ है वैसे भगवान भी सबसे ऊंचा है, इसलिए ऊपर वाला सर्वशक्तिमान कहते हैं उनसे। और मुझे लगता है माउली ने जो सूर्य का शब्द प्रयोग किया है उसके पीछे यही राज है। उनको सूरज जो अभिप्रेत है, विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, ये सूर्य जो है वो भगवान के बारे में, वो भगवान को देखते हैं और वो अभिप्रेत है उनको। अभी अगर सूरज इक्वल टू भगवान और भगवान इक्वल टू सूरज और भगवान का नाम ही सूरज, ऐसे अगर विश्व स्वधर्म में सूर्य पाहो में है तो अभी पूरा का पूरा अर्थ देख लीजिए। विश्व, सारे विश्व में भगवान के अलग अलग रूप है, भगवान की अलग अलग मान्यताएं है, नाम अलग अलग है, पहचान अलग अलग है और शायद सही पहचान न होने के कारण या अलग अलग पहचान होने के कारण या उसके जो कर्म है वो अलग अलग होने के कारण या उसका जो कार्य है उसका पूरा पूरा ज्ञान न होने के कारण शायद हमारे में लड़ाई है, झगड़ा है। ये हमारा भगवान है, ये आपका भगवान है। और ऐसे नहीं कि सिर्फ चार धर्म जो है मेन मुख्य धर्म जो मानते हैं हम चार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसमें भगवान अलग है, ऐसे नहीं है। अभी हिंदुओं में भी इतने देवताएं हैं, फिर भगवान क्या है, देवता क्या है, ये भी कंफ्यूजन है। और इसलिए सूर्य जो है, सूर्य के बारे में कभी कंफ्यूजन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भगवान के बारे में है। अगर भगवान इक्वल टू सूरज और सूरज इक्वल टू भगवान ये हम सोचते हैं तो विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो। शायद मुझे ऐसे लगता है माउली को ये अभिप्रेत है कि अगर जिस दिन सारा विश्व
अपने स्वधर्म में स्थित, स्वधर्म मीन्स आत्मा का धर्म, शांति का धर्म। आत्मा का धर्म है शांति, पिछले एपिसोड में हमने देखा था। तो आत्मिक स्थिति में सारा विश्व अगर स्थित हो जाता है और सूर्य जो है, भगवान जो है, उनको देखता

भगवान की विजय होगी, अंतिम विजय भगवान की होगी। अगर भगवान सत्य है, गॉड इज ट्रूथ, यह सही है, तो विजय किसकी होगी? अंतिम भगवान की होगी। और यही विजय जो है, और इसलिए देखिए सत्य युग कहा जाता है, भगवान को सत्य कहते हैं और युग को भी सत्य कहते हैं। और पांडव देखिए, पांडव में भले ही उनका जो श्रेष्ठ था, पांडव में बड़ा दादा, उसका नाम था युधिष्ठिर, लेकिन उनको भी कहते हैं धर्मराज। तो ये धर्म हो या सत्य हो या भगवान हो, उनकी विजय होगी, मीन्स जो अच्छाई की बुराई पर विजय होगी। और ये स्वधर्म में, विश्व स्वधर्म में सूर्य पाहो, सारा विश्व जो एक मुख से अगर भगवान को पहचान लेगा, ज्ञान भगवान के बारे में मिलेगा, तो क्या होगा? बुराई रहेगी नहीं, कोई लड़ाई नहीं रहेगी, कोई दुराचार नहीं रहेगा, कोई अशांति नहीं रहेगी, और सब अपने शांत स्वभाव में, शांति के धर्म में स्थित हो जाएंगे। तो सबके विचार क्या होंगे? विचार भी एक होंगे। और इसलिए बोलते हैं एक विचार तो एक आचार हो जाएगा, एक उच्चार हो जाएगा, और सब जहां एक होते हैं, यूनिटी। जब यूनिटी हो जाती है तब हर चीज आसान हो जाती है, और विश्व परिवर्तन जो है वो भी आसान हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा था, माउली का जो पसायदान है उसमें जो रोड मैप है या रिक्वेस्ट है, तो ये रोड मैप यहां पूरा हो जाता है सब्जेक्ट टू कंडीशंस। क्या क्या है? आता विश्वात्मा के देवे, उन्होंने विश्वात्मक देव को बताया, मांगा, येने वाग यज्ञ तोषावे, मेरे वाग यज्ञ जो है उससे आप संतुष्ट हो जाओ, और मुझे पसायदान दो, मुझे दान दो, मुझे क्या दो? ब्लेसिंग्स दो, मुझे आशीर्वाद दो। आता विश्वात्मा के देवे, येने वाग यज्ञ तोषावे, तोषो निमज द्यावे पसायदाने, जे खळांची व्यंकटी सांडू, तया सत्कर्मी रती वाढू, भूता परस्परे जडो मैत्र जीवांचे। ये भी देखा हमने। फिर दुरितांचे तिमिर जावो, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो। ये जब हो जाएगा तब स्वर्ग आ जाएगा, सतयुग आ जाएगा। और ये सतयुग कैसा है उसका वर्णन अगले कड़ी में। तो ये जो ओवी है, विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, उसके ऊपर जब चिंतन करेंगे तब लगता है, मुझे लगता है कि ये कंडीशन हो जाएगी, विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, सब एक रूप हो जाएंगे, एक मुख से बोलने लगेंगे, तो आगे क्या होगा? जो जे वांछील तो तेला हो प्राणी जात। आजकल हम बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन सब होता नहीं है। हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, क्योंकि शायद ऐसे कहते हैं कि आपकी इच्छा आपको अच्छा नहीं बना देती। और जब मुझे पूरा ज्ञान हो जाता है, परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, तो कोई इच्छा ही नहीं रहती और सब अच्छा हो जाता है। इसलिए जो जे वांछील तो तेला हो प्राणी जात, क्योंकि इच्छा ही अच्छी होगी। आजकल हमारी इच्छाएं अच्छी होगी उसकी गारंटी नहीं है, इसलिए कभी होती है पूर्ण या कभी नहीं होती है। लेकिन वो स्टेज जो माउली को अभिप्रेत है, जब विश्व स्वधर्म में, सारा विश्व अपने स्वधर्म में स्थित होके सूरज को देखने लगेगा, पहचानने लगेगा, तब जो मन में इच्छा है, जो जे वांछील तो तेला हो प्राणी जात, ये पूर्ण हो जाएगा। और फिर कैसे होगा ये स्वर्ग का रोड मैप, कैसे होगा स्वर्ग का दर्शन, कैसे होगा, वो अगले कड़ी में हम देखेंगे। तो यहां अपनी चर्चा हम पूरी करेंगे। विश्व

स्वधर में सूर्य पाहो, और अगले कड़ी में अगले चरण के ऊपर चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम शांति।